0: クリスナ、クリスナ、クリスナ、ओ चैतन्य महाप्रभु, पार्डन मी, हाउ कैन मॉर्टल इंटेलेक्ट कॉम्प्रिहेंड द इनफाइनाइट, हाउ कैन एन ओशन बी मेजर्ड बाय अ टाइनी पाम, माय प्राइड क्लाउडेड माय थॉट एंड ऑब्स्क्योर्ड द ब्यूटी ऑफ द लॉर्ड. My gratitude to you, Mahaprabhu. My gratitude to you.
1: Glorify above all the name of my Lord Krishna. It cleanses the mirror of Chitta, extinguishes the conflagration of birth and rebirth. It swells the ocean of bliss and bathes the existence in purity.